आ रही है बुद्ध लाइक जे वहां के तरफ सा यंग गिना होना होना ता बॉय की नक तुम पक बा मैं मान गिन हम पंग ये चगली से मंगा गैम्बलिंग अप अमोगी दिन गिना हम बाल तंग बस्ता सुगाल ति